0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टूडियो टाइम
0: इट्स 11 AM
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: हा हा

0: रेडियो था संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो था संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।